एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में रिले होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। उसके बाद 6:05 से सुनेगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा मुंबई के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार

पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत

0: प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदन वार। सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं। वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ईश्वर प्रेम का मार्ग नहीं बल्कि संपूर्ण प्रेम ही है। जो मनुष्य ईश्वर के प्रेम में लिप्त होता है उसे ये संसार अपना ही रूप लगता है। समस्त जीव जंतु सहचर प्रतीत होते हैं और वो स्वयं ब्रह्मांड की विशाल सत्ता के सामने नतमस्तक होता है।

भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में ही भक्ति का सार छिपा है। चंदन घिसने से पत्थर भी सुगंधित हो जाता है, ये सगुण भक्ति रूप है। तो उस पानी की कल्पना कीजिए जो चंदन और पत्थर के घर्षण के समय उपस्थित होकर चंदन ही बन जाता है। हमारी भक्ति उस पानी के समान ही होनी चाहिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन। आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुनिए झरोखा के अंतर्गत। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं। आज सुनिए 230वीं कड़ी। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी सुनिएगा। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 से हम है राही प्यार के और 8 से समाचार प्रभात। आठ बजकर 15 से सुन सकते हैं कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 से नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार मदन मोहन पर। सुन सकते हैं सुबह 9:30 से। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनिए चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। संपादन काजल भदरगी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 11 से रंग तरंग और 12 से हिंदी में समाचार।

क्रीड़ा सफर कार्यक्रम 1 बजे से 2 बजे से सुनिए त्रिवेणी। 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सदाबहार नगमे कार्यक्रम और 3 बजे से सुनिए सखी सहेली। 4 बजे होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण, तराने नए पुराने कार्यक्रम 5:30 से और 6 बजे से समाचार। छह बजकर 5 मिनट से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:30 से झरोखा के अंतर्गत आज के शीश और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुनिएगा। 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 पर सुन सकते हैं संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार 8वीं कड़ी। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंडारा। शाम 7 बजे से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में निर्देशक और फिल्मकार सुभाष जैन से नंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। लो कर लो दर्शन ये

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या, 9 बजे से सुनेगा कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम सुन सकते हैं, केंद्रित है संगीतकार मदन मोहन पर। रात 10 बजे से छाया गीत, 10:30 से ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, श्री रामचरित मानस। सुनिए 230वीं कड़ी।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थी कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है अहीर भैरव
2: जी।
1: आज इस राग की चर्चा करते हैं।
2: बिल्कुल,
1: अहीर भैरव राग का हमें परिचय दीजिए। कैसा इसका चलन है, इसके आरोह अवरोह के बारे में कृपया बताइए।
2: इस राग में देखिए ऋखव साथ तो होता ही सब राग में। सा के बाद ऋखव कोमल है, गंधार शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है, पंचम तो शुद्ध होता ही है।
1: हाँ।
2: वो तो सिर स्वर है सा और प। फिर धैवत भी शुद्ध है, निखात उसकी कोमल है। ऋखव और निखात दोनों कोमल है। सारे गामा पाधा निशा
1: जी,
2: मैं आपको इस पे करके बताता हूँ।

0: इस राग की खासियत यह है कि भैरव के प्रकारों में ये बहुत लोकप्रिय राग है
1: जी जी
0: और इस पे फिल्म वालों ने भी काफ़ी काम किया है, कुछ अच्छे गीत बनाए हैं और क्लासिकल म्यूजिक में भी ये बहुत लोकप्रिय राग रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें एक बंदिश सुनाता हूँ, उस्ताद अमीर खान साहब की बंदिश है वो।

0: क्या बात है पंडित जी। अहिर भैरव में ये खूबसूरत बंदी सुनने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन्ना दा की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई,
1: वो ऑल टाइम ग्रेट गीत है वो।
0: जी जी।
1: और उसमें जिस तरह से पंडित रामनारायण के जो सारंगी के पीसेज हैं,
0: जी हाँ,
1: वो बहुत सुनने काबिल है।
0: बजाइए, सुनते हैं
1: जी।

0: मन्ना डे के स्वर में अहीर भैरव राग पर आधारित मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। ये रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, बस कुछ ही पलों के बाद।
3: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
4: वीको टर्मरिक

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

विविध भारती पर कार्यक्रम भूले बिसर गीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आज है संगीतकार मदन मोहन के जन्म की तारीख और उन्हें याद करते हुए उन्हीं के संगीतबद्ध गीत इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं।

0: मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। भाई भाई फिल्म के इस गीत में गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अधोश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़, राजा मेहंदी अली खां के बोल और मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

चाचा जिंदाबाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लक्ष्मी शंकर की आवाजों में मस्ताना फिल्म से गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले।

0: कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: छोटे बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, कैफ इरफानी के बोल, मदन मोहन का संगीत।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का कम एक्सपर्ट।
4: वीको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार की, बस कुछ ही पलों के बाद।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुड्ढू।
7: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
8: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे मौसम फिल्म से ये गीत, मदन मोहन का संगीत, गुलजार के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं हम है राही प्यार के विविध भारती।

0: मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे नीला आकाश फिल्म से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खान के बोल।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: छाया।
1: हाँ जी।
0: पास बैठूं?
1: ना जी।
0: अरे मान जाओ ना।
1: नहीं।
0: अरे रे कहाँ चली, जरा ठहरो ना।
1: बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर चली जा मोटी।
1: पागल, तुम सुधरोगे नहीं। ओह क्या करते हो बेशरम।
0: ओए छाया।

0: जो प्यार वो ही मुझे हो गया, अरे वो ही मुझे हो गया।
1: किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजों में आफत फिल्म का गीत आपने सुना, माया गोविंद के बोल, नितिन मंगेश का संकेत। कार्यक्रम हम हेराही प्यार की आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का।

0: है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: आराधना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन।

0: का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

प्रेम कहानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। हम है राही प्यार के कार्यक्रम में अब सुनते हैं जीने की राह फिल्म से ये गीत, जिसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज़।

ना।

हाँ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला

0: करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और दो श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी आकाशवाणी समाचार देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के

0: उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। ये समय है हमारे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का।

0: गलतियां, विफलता, अनुभव, निराशा और दृढ़ता, ये सभी उन्नति और प्रगति का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन कठिनाइयों से गुजरे बिना जीवन में सम्मानजनक स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का आज का अंक लेकर हाजिर है हम। कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त आंचल, और मेरे साथ है
1: मीनाक्षी। तो स्वीकार कीजिए हमारा अभिवादन।
0: नमस्कार।
1: और देखो आंचल, आज है ग्रीन एंड गेट अवे थर्सडे, तो मॉर्निंग ब्रीफ में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, निर्जला एकादशी की बात होगी ही, साथ ही स्थानीय खबरें हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, और विश्व कप महिला T20 मैच में क्या रिजल्ट्स रहे कल के, और फीफा वर्ल्ड कप की बात भी करेंगे। इको टॉक में सर्कुलर इकोनॉमी से पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी देंगे।
0: बिल्कुल, और ट्रेवल टॉक में आज हम शेयर करेंगे अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जरगा जी की, और साथ ही अवेयरनेस सेगमेंट में बताएंगे आज के दिन का इतिहास।
1: तो पहले एक गीत।

0: वैसे आचल देखो, मौसम तो सफ़र का तभी बनता है जब मौसम सुहाना होता है, लेकिन अगर अभी बात करें तो बहुत गर्मी, और बुधवार का दिन तो बेहद गर्म रहा। शाम को बादलों की आवाजाही से भी कोई राहत नहीं मिली, और अधिकतम तापमान में बढ़त देखी गई, न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई, और आने वाले दिनों में मौसम यूं ही बने रहने के आसार हैं। लेकिन और खबरों की तरफ नज़र डालें।
1: बिल्कुल, अब स्थानीय खबरों पर अगर नज़र डालते हैं तो एक खबर है, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत राज्य सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी अस्पतालों में स्थानीय स्तर पर खरीदी जाने वाली जीवन रक्षक दवाओं को सीधे मरीजों को नहीं बांटा जा सकेगा। वितरण से पहले इनका लैब टेस्ट कराना होगा, और लैब से गुणवत्ता रिपोर्ट आने तक इन दवाओं को क्वारंटाइन स्टॉक में रखा जाएगा।
0: बिल्कुल, दाऊदी बोहरा समुदाय ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत की याद में यौमे आशूरा मनाया, और इस अवसर पर समाज द्वारा मातमी जुलूस भी निकाला गया। वैसे आंचल मुहर्रम अकीदत और पारंपरिक तरीके से मनाया जाने वाला शहादत का मौका है, और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छड़ियों का जुलूस, मजलिस और ताजी निकाले जाते हैं, और मस्जिदों इमामबाड़ों में विशेष दुआओं का दौर चलता है। आज रात भड़भूजा घाटी में छड़ी मिलन की रस्म होगी, और इसके साथ कल जो है बुधवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए उदयपुर जिले की ऑनलाइन लॉटरी अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निकाली गई, और इस माध्यम से कुल 1989 वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया गया, जिनमें 1772 यात्री रेल मार्ग से और 217 हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। मुख्य सूची में यदि कोई चयनित यात्री यात्रा नहीं कर पाता किसी कारणवश, तो प्रतीक्षा सूची से उसका स्थान भरा जाएगा।
1: बिल्कुल, और आज के दिन विशेष की अगर बात करें तो आज है निर्जला एकादशी, जो हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और निर्जल व्रत रखते हैं, और कहा जाता है इस एक व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है।
0: बिल्कुल, अच्छा, स्वस्थ शरीर के लिए योग जरूरी है, स्वस्थ मस्तिष्क और मन के लिए संगीत, और हमारे जीवन की मूलभूत जरूरतों का महत्व समझाती है हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, जैसे जल की उपयोगिता से जुड़ा है आज का यह खास पवित्र दिन, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी। और देखो, चूंकि महाभारत काल में भीम ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर एकमात्र इसी कठोर उपवास को किया था, क्योंकि पता ही है कि वो उन्हें भोजन कितना प्रिय था, तो महाभारत काल में ये जो व्रत उन्होंने किया, तब से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ा। और जहां गुजरात और कई शहरों में, जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाने के लिए प्रसिद्ध है ना, वही मेवाड़ की परंपरा है निर्जला एकादशी पर पतंग उड़ाने की, और आज तो बच्चे, बड़े, महिलाएं, पुरुष सभी नजर आते हैं घर की छतों पर पतंगबाजी करते हुए।
1: बिल्कुल, हमारे शहर की अगर बात करें तो निर्जला एकादशी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर ने बताया कि गुरुवार को अपनी टीम के साथ 5:30 बजे से राजीव गांधी पार्क के सामने फतेह सागर के सूखे पेटे में पतंगबाजी से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस बार वो अपनी पतंगों से विशेष तिरंगा काइट ट्रेन, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गुजरात काइट फेस्टिवल में उड़ाई, उसका प्रदर्शन करेंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर, जय मेवाड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश देने वाली पतंगों का प्रदर्शन करेंगे।
0: बिल्कुल, और आज शहर के श्रीनाथ जी मंदिर, जगदीश मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। पंचामृत स्नान कराकर केसरिया वस्त्र प्रभु को धराए जाएंगे, उनके समक्ष जलपात्र भरकर फव्वारा भी चलाया जाता है, और पानी से भरी मटकियां मंदिरों में पधराई जाती हैं। पंखे और मौसमी फल जो हैं वो भी दान पुण्य करने का आज के दिन का विशेष महत्व रहता है। विशेष आरती भी होती है, और देखो इस दिन जो विशेष एक आयोजन के तहत व्यवस्थाएं भी अलग होती हैं।
1: बिल्कुल, आज के दिन जगदीश मंदिर की अगर बात करें तो जगदीश मंदिर में हजारों भक्त ठाकुर जी दर्शन करने पहुंचेंगे। ऐसे में मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए विशेष इंतजाम किए गए, छाया के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, साथ ही मंदिर की परिक्रमा में कारपेट भी बिछाए गए ताकि भक्तों के पैर नहीं जले।

0: बच्चे कहाँ हैं?
1: बिल्कुल, अब स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ चलते हैं आंचल। तो 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण के रोमांचक मुकाबले जारी हैं। 48 टीम्स कुल 104 मैचेस खेलेगी 12 ग्रुप्स में, और भारतीय समय के अनुसार सुबह 12:30 से ग्रुप्स के दो दो मैचेस खेले जा रहे हैं, जिसमें पहले ग्रुप बी के, फिर 3:30 पर ग्रुप सी और 6:30 पर ग्रुप ए के दो दो मैच हुए। तो ग्रुप बी के मैच की बात करें, स्विट्जरलैंड ने 2-1 से जीता मैच और कनाडा से ये मैच जीता। उन्होंने 7 अंकों के साथ ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, और वैसे कनाडा भी अंतिम 32 में पहुंच गई है। दूसरा मैच जो हुआ वो बोस्निया और हर्जेगोविना कतर के बीच में हुआ, और बोस्निया एंड हर्जेगोविना ने सिएटल में कतर को 3-1 से हराकर वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। टीम का प्रदर्शन दमदार रहा और 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी करीम अलेज बेकोविक का अब जो है मुख्य केंद्र बन गए अपने खेल से। ये मुकाबला वास्तव में एक नॉकआउट मैच की तरह रहा, क्योंकि दोनों टीम जानती थी कि हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर होना है। इसके बाद ग्रुप सी के जो मुकाबले हुए उसमें एक मैच में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से और दूसरे में मोरक्को ने हैती को 4-2 से शिकस्त दी। ग्रुप ए के मैचेस की बात करें तो साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया में साउथ अफ्रीका जीती 1 करके, साउथ कोरिया अपना खाता नहीं खोल पाई। और दूसरा जो मैच रहा वो चेकिया और मैक्सिको के बीच में रहा। चेकिया कोई भी गोल नहीं दाग सकी जबकि मैक्सिको ने 3 किए।
2: तो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो अब हम चर्चा करते हैं महिला T20 वर्ल्ड कप कल के मुकाबले की। तो 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना अजेय अभियान जारी रखते हुए पाकिस्तान को कल 113 रन से करारी शिकस्त दी। यह टूर्नामेंट में किसी टीम की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवर में 199 रन का स्कोर बनाया और अनुभवी बैटर एलिस पेरी ने 48 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 71 रन की पारी खेली। जवाब में पाकिस्तान ने 13 ओवर और 4 बॉल में 86 रन पर ऑल आउट हो गया। इस निराशाजनक प्रदर्शन के चलते टीम को लगातार चौथी हार झेलनी पड़ी और यह टूर्नामेंट से बाहर हो गई।
1: तो बड़े ही रोचक मुकाबले चल रहे हैं और आज एक और खास दिन है आंचल।
2: आज के दिन विशेष की बात करें तो आज यानी 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर नाविकों को समर्पित है जो समुद्र की अथाह गहराइयों और कठिन परिस्थितियों में रहकर हमारे जीवन को सुचारू बनाते हैं। मीनाक्षी, क्या आप जानती हैं दुनिया का लगभग 90% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है? इसका मतलब है कि हमारे रूटीन की कई उपयोगी वस्तुएं, चाहे वे कपड़े हो, इलेक्ट्रिक आइटम हो या खाद्य पदार्थ,

0: नाविकों की मेहनत से ही हम तक पहुंचती हैं। यह दिन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2010 में शुरू किया गया था और इसे यूनाइटेड नेशन का समर्थन प्राप्त है।
1: बिल्कुल, ये नाविक यानी समुद्री यात्री, इनकी जिंदगी आसान नहीं होती है आंचल, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर और परिवार से लंबे समय तक दूर रहते हैं, खतरनाक मौसमी परिस्थितियों का सामना करते हैं, कुछ क्षेत्रों में डकैती का खतरा भी होता है और कठिन कामकाज की स्थितियां होती हैं। नाविक वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, ये सुनिश्चित करते हैं कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले, वे सामान और ईंधन उपलब्ध कराएं जिन पर हम निर्भर हैं। नाविक वास्तव में वैश्विक व्यापार के पीछे छुपे नायक हैं आंचल, और बंदरगाहों पर नाविकों के साथ उचित व्यवहार का आह्वान करता है। ये दिन उन मुद्दों पर भी ध्यान देता है जो नाविकों के काम और जीवन को प्रभावित करते हैं, और इस साल की जो थीम है वो है विश्व व्यापार का संचालन, जोखिमों का वहन।
0: अंत में यही कहेंगे, जो लहरों से डरकर नौका पार नहीं करते वो कभी मंजिल के हकदार नहीं बनते।

मीनाक्षी कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। अब बात करें कार्यक्रम में तो आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण, संसाधनों की कमी और कचरे की बढ़ती समस्या आज हम सबके सामने बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में सर्कुलर इकोनॉमी एक प्रभावी समाधान के रूप में

0: हमारे सामने आया है। तो आज के ग्रीन एंड गेटवे थर्सडे के इको टॉक में आज हम बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी से पर्यावरण संरक्षण की।
1: सर्कुलर इकोनॉमी का अर्थ है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, यानी इसमें उत्पादों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे लंबे समय तक उपयोगी रहें और बाद में उनका पुनः उपयोग किया जा सके। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें संसाधनों को बार बार उपयोग में लाया जाता है और कचरे को कम किया जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम प्लास्टिक, कागज या धातु को रिसाइकल करते हैं, पुराने सामान को दोबारा यूज में लेते हैं या ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, तो हम सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाते हैं। इससे न केवल कचरा कम होता है, साथ ही ये प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा करते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण में सर्कुलर इकोनॉमी का रोल हमारे श्रोता समझ ही गए होंगे। सर्कुलर इकोनॉमी कचरे को कम करके प्रदूषण घटाती है। रीयूज यानी बार बार उपयोग करने से नए संसाधनों की जरूरत हमें कम होती है, तो इससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। रिसाइकिल से ऊर्जा की खपत कम होती है और इससे ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने में भी मदद मिलती है।
1: सर्कुलर इकोनॉमी की चुनौतियां भी हैं, देखो आंचल, जागरूकता की कमी और रिसाइकलिंग सुविधाओं का अभाव। इसलिए हमें स्वयं से शुरुआत करनी होगी इसके लिए और दूसरों को भी प्रेरित करना होगा। संसाधनों का सही उपयोग ही पर्यावरण संरक्षण का सच्चा संरक्षण है और सर्कुलर इकोनॉमी पर्यावरण संरक्षण का एक मजबूत और टिकाऊ उपाय है। इसके लिए हम सभी छोटे छोटे प्रयास करके हमारी पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकेंगे।

0: और ये हवाएं गुनगुना के बता रही हैं कि आज के दिन का इतिहास क्या कहता है। तो 25 जून है आज का दिन, और देखो 1975 गए आपातकाल की बरसी 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि देश में आपातकाल घोषित किया गया था 1975 में, जिसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। यह दिन उन लोगों के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने आपातकाल के दौरान यातनाएं सही और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। साथ ही 2005 में अहमदी निजान ईरान के राष्ट्रपति बने, और 2017 में क्रिकेटर श्रीकांत ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब जीता था।
1: और बात करें आज जन्मे विशेष व्यक्तियों की, तो वर्ष 1900 में लॉर्ड माउंटबेटन, जो ब्रिटिश राजनेता, नौसेना प्रमुख और भारत के अंतिम वायसराय थे, इनका जन्म आज ही हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकारों

0: में से एक चंद्रशेखर पांडे का जन्म भी वर्ष 1903 में आज ही के दिन हुआ। बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन का जन्म भी आज यानी वर्ष 1924 में हुआ था। और 1975 की अगर बात करें तो मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक है, इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला एथलीटों में से एक सुधा सिंह वर्ष 1986 में इसी दिन जन्मी थी। और भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सतीश झा का जन्म भी वर्ष 1961 में आज ही के दिन हुआ था।
1: बिल्कुल। और गोवा की स्वतंत्रता के स्वतंत्रता सेनानी मोहन रानाडे ने आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और राजस्थान के 10वें मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर भी आज के दिन हमें अलविदा कह गए थे साल 2009 में। और स्वामी हजनानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, 1950 में इनका निधन हुआ। तो ये आज के इतिहास से जुड़ी बातें।

0: वाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वे जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास और विभिन्न सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस प्रस्तावित यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से जुड़े सुरक्षा मानकों और अन्य सभी व्यवस्थाओं को समय रहते पूरा किया जाए। इस ऐतिहासिक आयोजन को विकास और रोजगार के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक आमजन और जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग और पोर्टल पर आंकड़ों को समय पर अपडेट करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं में देरी और लागत को बढ़ने से रोका जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सक्रिय शासन और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्रों से जुड़ी 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। 4 राज्यों में फैली इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-2026 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 38 सालों से केंद्रीय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता देशभर के 200 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। युवा संसद का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। करौली जिले के खंडीप में पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर चल रहा किसानों का धरना कल शाम समाप्त हो गया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों से समझाइश की। डॉ. मीणा ने किसानों को आश्वस्त किया कि आगामी 6 दिनों के भीतर पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ दिया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन के बाद किसान नेताओं ने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करते हुए धरना समाप्त करने की घोषणा की। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे करौली संवाददाता।
1: पांचना बांध के पानी को लेकर जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। कैचमेंट क्षेत्र के 39 गांवों को प्राथमिकता से पानी देने की मांग को लेकर गुडला पांचना संघर्ष समिति बांध पर धरना दे रही थी, जबकि कमांड क्षेत्र में नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान खंडीप में आंदोलनरत थे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के आश्वासन के बाद दोनों पक्षों ने अपना आंदोलन समाप्त और स्थगित कर दिया। अब प्रशासन

0: किसानों के बीच समन्वय बनाकर स्थायी समाधान की दिशा में प्रयास करेगा। माके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं।

0: पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने प्रदेश की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ लेखाकार और कनिष्ठ सहायक सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हाल ही में टेक्नीशियन थर्ड की 2163 पदों का अंतिम परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ये निकाली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और ये भर्ती बजट घोषणा के अनुरूप की जा रही है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये नतीजे जारी करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे। परीक्षा के नतीजे विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट और अन्य निर्धारित माध्यमों से ऑनलाइन देख सकेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अनुपालना को लेकर जयपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को आगामी 31 मार्च तक राजस्थान को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर लाने के लक्ष्य के साथ काम करने के निर्देश दिए। श्री दिलावर ने आगामी 31 जुलाई तक 4000 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने और पुराने कचरे के ढेरों को पूरी तरह हटाने को कहा। साथ ही 31 अक्टूबर तक 1600 ग्राम पंचायतों में कचरे को अलग करने के लिए 4-स्तरीय व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसका मंत्री खुद निरीक्षण करेंगे। उन्होंने वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 100% स्वच्छता का लक्ष्य रखने और विलायती बबूल उन्मूलन अभियान के लिए सभी विभागों को मिलकर संयुक्त कार्य योजना बनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। वे कलेक्ट्रेट परिसर में नवनिर्मित अभियोजन भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी मौजूद रहेंगे। निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु आज निर्जला व्रत रखकर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में किला स्थित प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं। इस अवसर पर ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। सवाईमाधोपुर में विभिन्न संगठनों की ओर से लोगों के लिए ठंडे पदार्थ पिलाने की व्यवस्था की गई है। अजमेर में तीर्थराज पुष्कर में विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिरों में भजन कीर्तन के आयोजन हो रहे हैं।
1: प्रातःकाल से श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और दान पुण्य के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: उधर पाली जिला मुख्यालय स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर में भगवान का 450 किलो आम से विशेष श्रृंगार किया गया है। जयपुर नगर निगम आगामी दिनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए फायर एनओसी को लेकर लगातार सर्वे और जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत कल निगम की टीम ने शहर के विभिन्न तरह के 74 भवनों का निरीक्षण किया और कमियां पाए जाने पर 53 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। पांचना बांध का पानी नहरों में छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप में चल रहा किसानों का धरना सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की पांचों विद्युत कंपनियों में विभिन्न संवर्गों के कुल 2005 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी और निर्जला एकादशी का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत श्रद्धा भाव

0: से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में,
2: और मेरे साथ आंचल है और मैं मीनाक्षी। और आंचल, अब सबसे पहले इकबाल हुसैन इकबाल द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ सुनते हैं।
3: गजल का मतलब समझ फरमाएं। शायरी में पुख्तगी गर चाहिए, शायरी में पुख्तगी गर चाहिए, सिर्फ अशकों का समंदर चाहिए। और इस जहां को सच सुनाना हो अगर, इस जहां को सच सुनाना हो अगर, हाथ में हर वक्त पत्थर चाहिए। हौसलों को आजमाने के लिए दुश्मनों के सामने घर चाहिए। सुधर जाएगा बिगड़ा निज़ाम सारा, बस हथेली पर रखा सर चाहिए। और गीत गज़लें दें पयाम खुशरवि, गीत गज़लें दें पयाम खुशरवि, महफिलों को वो सुखनवर चाहिए। और हम नवाई हमने खूब देख ली, हम नवाई हमने खूब देख ली, यार अब कोई सितमगर चाहिए, यार अब कोई सितमगर चाहिए। गज़ल का मतलब समाज फरमाएं।

चली हैं चलेंगी सियासी हवाएं, चली हैं चलेंगी सियासी हवाएं, किसी को छले तो किसी को फले हैं।

यही सिलसिले तो अजल से पले हैं, और कमा कर भी हर दिन रहे हाथ खाली, कमा कर भी हर दिन रहे हाथ खाली, वहीं पर खड़े हैं जहाँ से चले हैं, वहीं पर खड़े हैं जहाँ से चले हैं। और मुख्तार सुभान फरमाए, कभी लोग इकबाल तुझ

और गजल का मतलब समाप्त फरमाए। बदला हुआ समा है, बदले हुए नजारे,

फिर देखिए, कल तक जो यार हम पे दिलो जान।

और अब हम यात्रा संवाद में दर्शन करेंगे जरगा जी के। धन दौलत ना चाहिए ना चाहिए घर बार, केवल जरगा नाम हो अलख का आधार। ये स्थान मेघवा समाज के महान संत जरगा जी की तपोभूमि है, जिनका जन्म आज से लगभग 600 से 700 वर्ष पूर्व हुआ था। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर अलख धणी की भक्ति और उनकी तपस्या का मार्ग अपनाया। जरगा जी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के एक पूजनीय लोक देवता हैं, जिन्हें जरगारा धणी के नाम से भी जाना जाता है। इनका इतिहास लोक कथाओं में बाबा रामदेव जी से जुड़ा हुआ माना जाता है। कथाओं के अनुसार जरगा जी रुणेचा के संत बाबा रामदेव जी के परम भक्त थे। जनश्रुतियों में कहा जाता है आंचल कि जब रामदेव जी ने समाधि ली, तब जरगा जी उनके घोड़े लीले की सेवा में लीन रहे। वे 12 वर्ष तक उसी अवस्था में कठोर तपस्या में बैठे रहे, जिससे उनका शरीर कंकाल के समान हो गया। उनकी अटूट भक्ति देखकर बाबा रामदेव जी ने उन्हें पुनः दर्शन देकर जीवित और स्वस्थ किया। उनके इस अपार समर्पण को देख अलख धणी प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा।

0: जरगाजी ने उत्तर दिया, धोम धणियोरी नाम जगरारो, यानी यह धाम अलख धणी आपका रहे और नाम मेरा रहे। और तब अलख भगवान ने कहा कि आज से मेरे नाम से आगे तेरा नाम आएगा, और इसी आशीर्वाद के बाद वे जरगारा धणी कहलाए। तब से बाबा का नाम लेने से पहले जरगाजी का नाम लिया जाने लगा।
1: बिल्कुल, जरगा जी का मुख्य धाम उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील में अरावली पर्वतमाला की हरी भरी वादियों और जरगा पहाड़ी पर स्थित है। जरगा अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में से एक, लगभग 1431 मीटर ऊंची है, जो मुख्य रूप से उदयपुर और राजसमंद के बीच फैली हुई है। इस पवित्र स्थान पर भक्तराज जरगा जी की जीवित समाधि बनी हुई, साथ ही रामदेव जी और महादेव जी के भी मंदिर यहाँ बने हुए हैं। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। जरगा जी के स्थान पर हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष रूप से आयोजन होते हैं। ढालो पाली जैसे दूरदराज के क्षेत्रों से संत और श्रद्धालु लगभग 54 किलोमीटर पैदल चलकर महाशिवरात्रि के दिन जरगा जी पहुँचते हैं। लोक संगीत और कथाओं के माध्यम से मेवाड़ में जरगा जी की महिमा और इतिहास का गुणगान किया जाता है। इतिहास के अनुसार महाराणा मोकल को जरगा जी की समाधि पर संतों के आशीर्वाद से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कलश यानी कुंभ के आशीर्वाद से जन्म होने के कारण बालक का नाम कुंभा रखा गया। आगे चलकर महाराणा कुंभा ने ही यहां पाषाण की भव्य छतरी का निर्माण करवाया।
0: श्री राघु पीर यानी रघुनाथ पीर राजस्थान के उन महान संतों में से एक हैं जिन्होंने अपनी भक्ति और चमत्कारों से समाज में अहिंसा और धर्म की स्थापना की। राघु पीर एक माह की शुक्ल बीज को भजन करने जरगा जी नया स्थान धाम आते थे, और एक बार जरगाजी पर्वत पर संतों ने उनकी परीक्षा ली। संतों ने एक सूखे आम के पेड़ को हरा करने की चुनौती दी। रघुपीर ने अपनी भक्ति के बल पर उस सूखे पेड़ को तुरंत हरा भरा कर दिया। उस स्थान पर बलि दी जाती थी। रघुपीर ने भी अपनी शक्ति से चमत्कार दिखाया और तब से वहां बलि प्रथा समाप्त हो गई। उन्होंने मदिरा को दूध बना दिया और उसका पंचामृत बनाकर संतों को पिलाया। संतों के हाथ धोने के लिए उन्होंने आह्वान करके गंगा प्रकट करवा दी। वहां गंगा कुंड से 16 कलश भरे गए। एक कलश जरगाजी की समाधि पर रखा गया और बाकी 15 कलशों के से सप्त धान यानी 7 अनाज पकाकर प्रसाद बनाया गया।
1: आज भी जरगा जी के मेले की रात गंगा वेरी से कलश भरने की परंपरा है, जो भविष्य का संकेत देती है। यदि पूरे 16 कलश भर जाते हैं तो अच्छी बारिश होती है, और कलश खाली रहने का यानी कम बारिश का संकेत है। सप्त धान में से जो अनाज सबसे ज़्यादा पकता है उसकी फसल उस वर्ष खराब होने का भय रहता है, और जो ठीक पकता है वो फसल अच्छी होने का संकेत है।
0: यहाँ पर हर साल फागुन बदी 14 के दिन मेला भरता है। और राघुपीर जी ने ढालोप में जीवित समाधि ली थी। जिस आम के पेड़ को उन्होंने हरा किया वो संवत 2008 में गिर गया, और इसके पश्चात वैशाख सुखी सुदी सप्तमी बुधवार संवत 2012 को वहाँ रघुपीर जी की छतरी बनवाई गई, जहाँ आज से ढालोप से आने वाली सेवा विराजित होती है।

0: और इसी भक्ति रस के साथ ही अनुमति लेते हैं आज के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर से। तो श्रोताओं, आज मैं थी मीनाक्षी
1: और मैं आंचल,
0: दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

दोस्तों, आज है गुरुवार और आज 10 बजे गुजरे ज़माने की बात होगी वो भूली दास्तां में, और 11 बजे व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम होगा तराने हमारे व्हाट्सएप आपके। और आपको बता दें कि आज भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता निर्माता आफताब शिवदेसानी का जन्मदिन है। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अनिल कपूर श्रीदेवी स्टारर फिल्म मिस्टर इंडिया से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और वर्ष 1999 में शिवदेसानी ने निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त से एज अ हीरो डेब्यू किया था। तो चलिए इसी फिल्म का गीत आप तक पहुंचाते हैं।

श्रोताओं, आज एक भारतीय फिल्म और टीवी अभिनेता सतीश शाह का जन्मदिन भी है। उनका पूरा नाम सतीश रविलाल शाह, हिंदी के साथ मराठी सिनेमा में वे सक्रिय रहे और हास्य किरदारों के लिए खास उन्हें याद किया जाता है। शुरुआत वर्ष 1970 में फिल्म भगवान परशुराम से हुई थी और उनकी बेहतरीन फिल्मों के नाम यदि आपको बताएं तो उमराव जान, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं, कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना हो, मैं हूं ना, फना, ओम शांति ओम और जाने भी दो यारो, ये जो है जिंदगी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई उनके काफ़ी चर्चित टीवी शोज रहे थे। और ये जो है जिंदगी की बात करें तो एक ऐसा सिटकॉम था जिसके 55 एपिसोड्स में उन्होंने 55 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए थे। उनकी आवाज़ आपको सुनवाते हैं और जिस फिल्म से हमने ये संवाद लिया है उसी फिल्म का गीत इसके बाद आप तक पहुँचाएंगे।

0: नमस्ते डॉक्टर साहब।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, आज इतनी नाराजगी कैसी?
1: ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे ये सवाल आप इनसे कीजिए, इनसे हैं? राजेश का रिश्ता तय करा है, बहू चुन ली और हमें खबर मिल रही है आज हैं?
2: डॉक्टर साहब
1: क्या है? पा, पा, पा, पा, पा। पान वान हमें नहीं चाहिए लल्लू मियां, आज हम बहुत गुस्से में हैं, आज हम ना खाएंगे ना पिएंगे, हम जा रहे हैं। मुबारक हो, खुदा हाफिज। हटिए जी।
3: डॉक्टर सामने बहू की तस्वीर रखी है टेबल पर। कैसी लगी बहू?
1: यार बहू की सादगी देखकर एक शेर याद आ गया।
0: इरशाद इरशाद
1: तो अर्ज किया है। बेटे शेर शुरू तो करने दे।
4: तो तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर,
1: वाह वाह वाह,
4: तस्वीर हो गया हूँ तस्वीर देखकर, रूखे लुटी है यार की तकदीर देखकर।
1: बहू जेब देता है अंगूठी में नगीना जिस तरह है, जेब देता है अंगूठी में नगीना जिस तरह है, दुआ मेरी रहो दोनों हमेशा उस तरह। ये ले राजेश बेटा। अबे तू काका को क्या देख रहा है? स्कूल जाते वक्त मुझसे चवन्नी लिया करता था, भूल गया? बड़ा हो गया तो रईस हो गया क्या? क्या रख ले?
5: बहू के सामने तुझे इस तरह मत डांटिए।
1: अरे मैं तो इसे इसके बच्चों के सामने भी ऐसे ही डांटूंगा।

0: दोस्तों 25 जून 1957 को जबलपुर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था एक मुकम्मल कलाकार का, रघुवीर यादव, एक भारतीय अभिनेता, संगीतकार, गायक और सेट डिजाइनर। हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी 1985 की फिल्म मैसी साहिब से। शीर्षक भूमिका इसमें उन्होंने निभाई और फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किए। यादव ने 70 से ज्यादा नाटकों और लगभग 2500 शोज में बतौर अभिनेता और गायक काम किया। पारसी थिएटर कंपनी के साथ भारत के गांवों, कस्बों और शहरों में अस्थायी मंचों पर प्रदर्शन किया। उन्होंने दस्ताने वाली कठपुतलियों के साथ भी प्रदर्शन किया। टेलीविजन करियर की बात करें तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसमें उन्होंने मुख्य किरदार निभाया था और काफी पसंद किया गया था। उन्होंने आमिर खान की पीपली लाइव में भदवई गांव मंडली के साथ एक गाना गाया और कई विज्ञापनों में भी गायन उनका रहा और सुनना जाता है। और ख़ास फिल्मों की बात करें तो 1942, अ लव स्टोरी, खामोशी, दिल से, लगान, अशोका, आजा नचले काफ़ी उनकी पसंदीदा फिल्म रही हैं। उनकी भी आवाज़ सुनवाते हैं और फिर उनकी फिल्म का गीत।
1: इसको लगाने के बाद इतना लगाने का जरूरत नहीं पड़ता। अरे भाई, प्रधान हो, प्रधान के लायक कोई काम होगा तो हम बता देंगे।
2: दरअसल एक्टिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। और वो फट्टियों पर बैठकर पेड़ के नीचे हमारी पढ़ाई हुआ करती थी। वहीं जंगल था आसपास, तो वहीं भैंसे चराया करता था मैं, बैलगाड़ी चलाता था। तो एक्चुअली म्यूज़िक से मेरा काफ़ी लगाव रहा और मैं चाह रहा था कि म्यूज़िक सीखूं। ये समझ ली एक्टिंग मेरे गले पड़ गई, बस गले पड़ी तो फिर उसको सीखनी ही पड़ी। तेरी

0: कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: और दोस्तों, गुड मॉर्निंग लेक सिटी का अंतिम गीत अब आप तक पहुंचाते हैं, और ये करिश्मा कपूर की फिल्म अनाड़ी से है। और आज यानी कि 25 जून का दिन है और करिश्मा कपूर का भी जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी कलाकारों को, साथ में करिश्मा कपूर को। और उनकी हिट फिल्मों की बात करें तो जिगर, अनाड़ी, कुली नंबर 1, राजा बाबू, अंदाज, अपना अपना, साजन चले ससुराल, राजा हिंदुस्तानी, जीत, दिल तो पागल है को तो राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला उन्हें, और बीवी नंबर 1, ये खास फिल्में उनकी रहीं, साथ में फिजा, जुबैदा, शक्ति, द पावर, हम साथ साथ हैं। और अपनी उनकी जो पहली फिल्म थी वो थी प्रेम कैदी, 1991 में ये फिल्म आई थी। तो चलिए गुड मॉर्निंग लेक सिटी का अंतिम गीत आप तक पहुंचाते हैं उदित नारायण की आवाज़ में।

0: आप चाहते हैं म्यूजिक और मस्ती का ऐसा मैजिक जो कर देगा आपको मेसमराइज, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, जस्ट ट्यून टू
1: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

रात के सन्नाटे में आज भी जो फिल्मी गीत सबसे ज़्यादा सुकून और शांति का एहसास कराता है वो है यही गीत, लता जी की आवाज़, भारत के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक। इसे बेहतरीन तरीके से फिल्माया भी गया। फिल्म वो कौन थी, इस फिल्म का ये गीत खूबसूरत जोड़ी साधना और मनोज कुमार की, लेकिन इसका सबसे बड़ा श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसने इसकी धुन की रचना की, मदन मोहन, पूरा नाम मदन मोहन कोहली।

वो भूली दास्तां में आज हम याद कर रहे हैं मदन मोहन को, क्योंकि आज ही के दिन 25 जून 1954 में 24 में उनका हुआ था जन्म।

बहुत कम संगीतकार ऐसे हुए हैं जिन्हें प्रशंसकों और संगीतकारों ने मदन मोहन जितना प्यार और प्रशंसा दी। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, गजल या अर्धशास्त्रीय शैली में कई मधुर धुनें रचीं, जिनमें से ज्यादा लता दी की आवाज में ही थीं। लेकिन इस गीत में आवाज है आशा भोसले की।

मदन मोहन जादुई धुनें उनकी अविस्मरणीय हैं। भारत के सर्वकालिक महानतम संगीतकारों में से एक और उनके संगीतबद्ध के गीत मदन मोहन की प्रतिभा के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं।

0: पासवर्ड।
1: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
0: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
1: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।

लता जी उनके जीवन में उनकी प्रेरणा रही थी। एक बार मदन मोहन इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता मंगेशकर कोई गीत नहीं गा सकी और मदन मोहन लता जी के घर चले गए। एक राखी देते हुए उनसे कहा कि आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा भैया। मैं वचन देता हूँ कि आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाओगी। और ऐसा ही हुआ।

यह हिंदी फिल्म संगीत का सौभाग्य था कि दो बेहद प्रभावशाली व्यक्तियों ने एक साथ आकर ऐसे गीत दिए जो काफी यादगार बने।

ये गीत आपने सुना फिल्म दस्तक से। मजरूह सुल्तानपुरी की इस रचना को लता जी के साथ उन्होंने अपनी आवाज़ में भी गाया, यानी कि एक और वर्जन इस फिल्म में इस गीत का रहा, जिसमें आवाज़ मदन मोहन की।

लोकप्रिय संगीतकार नौशाद साहब भी उनकी संगीत की उनकी धुनों के बहुत बड़े फैन थे। एक बार उन्होंने अनपढ़ फिल्म का गीत सुना लता जी की आवाज़ में, है इसी में प्यार की आबरू, और इस गीत को सुनकर उन्होंने मदन मोहन से कहा कि वो इस रचना के लिए अपने सभी गाने दे सकते हैं।

97 फिल्मों के लिए उन्होंने करीब 700 से अधिक गाने कंपोज किए थे। कहा जाता है कि गज़ल को फिल्मों में सही मुकाम दिलवाने वाले मदन साहब ही हैं, और यही कारण है कि लता जी उन्हें गज़ल का शहजादा भी कहा करती थी।

मदन मोहन मुंबई में जहाँ रहा करते थे वहीं बगल की कोठी नरगिस की माँ जद्दनबाई की थी। मदन मोहन रोज शाम को उनके घर गाना सुनने जाते थे। उनका संगीत की समझ मदन मोहन को वहीं से मिली। इसी दौरान उनके नरगिस से भी गहरी दोस्ती हो गई और मदन मोहन के चेहरे उनके कद से वो एकदम हीरो की तरह दिखा करते थे। लंबा गोरा खूबसूरत तराशा हुआ चेहरा, बलिष्ठ शरीर और बुलंद आवाज़। जाहिर है अपने अच्छे दोस्त राज कपूर की तरह वो भी एक अभिनेता बनना चाहते थे, पर उनके पिता ने इसके लिए उन्हें सख्त मना कर दिया था और मदन मोहन को फौज में भेज दिया था।

मदन मोहन के बारे में संगीतकार खयाम का कहना था कि वे संगीत के बेताज बादशाह थे। संगीत की जितनी विविधताएं होती हैं उन सब का उन्हें गहरा ज्ञान था, अच्छी समझ थी।

11 साल की उम्र में गाना शुरू करने वाले मदन मोहन की जिंदगी ने उन्हें आर्मी से जोड़ा। 2 साल बतौर लेफ्टिनेंट काम करने के बाद वो लखनऊ आ गए, जहां पर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया। यहां पर उनकी मुलाकात हुई बेगम अख्तर, विलायत खान, तलत महमूद जैसी नामी हस्तियों से। इस दौरान मदन मोहन के मन में संगीतकार बनने की चाह उठी। जब पहली बार उनके पिता ने उनका दिया संगीत सुना तो वो भावुक हो गए, और बस फिर क्या था, पिता ने उन्हें संगीत में अपना करियर बनाने की इजाज़त दे दी। और लेकिन आर्मी से दूर जरूर हुए, लेकिन मन में देशभक्ति की भावना कभी कम नहीं हुई।

लेजेंड मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हकीकत फिल्म का ये गीत आज भी श्रोताओं में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है। आंखों को नम करने देने वाला ऐसा संगीत मदन मोहन ही दे सकते थे।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: उन्नीस सौ सत्तर में प्रदर्शित फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उन्होंने अपने 2.5 दशक लंबे सिने करियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। अपनी मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं के दिल में खास जगह बनाई। लता जी के साथ उनका रिश्ता ऐसा था कि उनके जाने के बाद भी लता जी ने वादा पूरा किया। मदन मोहन जी की मृत्यु के बाद साल 2004 में फिल्म वीर जारा के सभी 11 गीतों में उन्हीं की कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए सारे गाने लता जी ने गाए।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

इतनी मधुर धुनों से सबका दिल जीतने वाले मदन मोहन 14 जुलाई 1975 को इस दुनिया से जुदा हो गए। उनकी मौत के बाद वर्ष 1975 में ही मौसम और लैला मजनू जैसी हिट फिल्में प्रदर्शित हुई थीं। उनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करता है। वो भूली दास्तां आज इसमें हमने याद किया महान संगीतकार मदन मोहन को।

0: आकाशवाणी एट 90 रेडियो लेक सिटी लेक सिटी लेक सिटी लेक सिटी।
1: श्रोताओं 11:01 हो चुका है और अब वो कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे आपके नाम, क्योंकि ये है तराने हमारे व्हाट्सएप आपके प्रोग्राम। गीत प्ले होंगे हमारी पसंद के और यदि आपको भी अच्छे लगे तो कीजिएगा हमें व्हाट्सएप मैसेजेस 9462697।

0: 5668 फोन नंबर पर। आपसे विनती एक बार फिर से करते हैं कि एक साथ बहुत सारे नाम भेजे नहीं, नामों के साथ अनावश्यक जानकारी भी ना दें और संक्षिप्त संदेश टाइप करें, रिपीट ना करें। एक बार अगर आपका नाम शामिल हो जाए तो दोबारा ना भेजें, ताकि कार्यक्रम की रोचकता और मिठास बनी रहे। तो नोट कर लीजिए आज की फिल्मों के नाम जिनके गीत पहुंचने वाले हैं आप तक। मुकद्दर का सिकंदर, आदमी खिलौना है, जुबैदा, हम साथ साथ हैं, आशिक, जिगर और बागबान। तो सबसे पहले मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत।
1: ला ला ला ला।
0: आवाज किशोर कुमार की।

बहुत सारे जो है मैसेजेस पहले ही गीत में हमारे पास आ जाते हैं और आज भी ऐसा ही हुआ है, तो चलिए नामों को बताने का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैसेज आया है वो चंडीगढ़ से है। डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का, और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज।

बजाज बिट्टा बजाज। इसके बाद जो संदेश पहुंचा है वो बक्सर बिहार से है, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश का। डुमराव बिहार से है डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम, डॉक्टर दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से है श्रद्धानंद आर्य और इन्हीं के साथ है अभ्यानंद और परमानंद। सारिमपुर बक्सर से है राज एस जी अंसारी और आसमा खातून। इसके बाद का संदेश आया है कुरावली से, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार और विनित कुमार, सोनम वर्मा भी इनके साथ में है। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, ये हैं दिल्ली से। और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना। इसके बाद अगला व्हाट्सएप पहुंचा है सहारनपुर से, सैयद मसरू, शायना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीपका। अगला व्हाट्सएप गोल्डन रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हैं और राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन इनके साथ हैं। शिव मंदिर हकीकतपुर पूरा मऊ मध्य मऊ मऊ से हैं, ये हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार।

आज एस जी अंसारी और आसमा खातून। इसके बाद का संदेश आया है कुरावली से, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार और विनित कुमार, सोनम वर्मा भी इनके साथ में है। तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा, ये हैं दिल्ली से। और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना। इसके बाद अगला व्हाट्सएप पहुंचा है सहारनपुर से, सैयद मसरू, शायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीपका। अगला व्हाट्सएप गोल्डन रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हैं और राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन इनके साथ हैं। शिव मंदिर हकीकतपुर पूरा मध्य मऊ मऊ से हैं, ये हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू। इसके बाद पी एस नहावकर, निर्मला, विशाल, सोपान नारायण, ये नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोटा, सिटी दीवाना का भी संदेश हम तक पहुंच गया है। मिस्टर एंड मिसेस 55 बजाज नगर उदयपुर के श्रोता हैं। जज्जर हरियाणा से है बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक। और इसके बाद ये वापस रिपीट मैसेज अभी से ही पहले गाने में ही। फिर इसके बाद ये जो है परजादा मिराज उद्दीन और नज्म उद्दीन और ये हैं केसर उद्दीन, ये कश्मीर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। श्री सुधाकर, राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत, राजे कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमारी, प्रणाली, सर्वद, सानवी, हर्षिता, ये जाफराबाद से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमें तहे दिल से शुक्रिया के साथ संदेश भेज रहे हैं। और मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गीत को पसंद किया है अधवेश शर्मा, अशोक, रोहित, सनम, ब्रिजेश, हीरालाल, मुकेश, दिलमणि और श्री कृष्ण, कृष्णा शर्मा ने, और ये बक्सर बिहार के हमारे श्रोता हैं। इसके बाद ये हैं जितेंद्र, मंजू, पुष्पा, चिराग, मोनी, न्यू भोपालपुरा से। अब मैं आपके बाकी नाम नहीं लूंगी क्योंकि आप हर नाम के साथ न्यू भोपालपुरा लिख रहे हैं और कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट की है तो भी आप नहीं मान रहे। उसके बाद ये है निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं देते हुए उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी, नाहर सिंह वारी, हरिशंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना, काजल और मालदा स्ट्रीट रविंद्र सरणी कोलकाता पश्चिम बंगाल से ये व्हाट्सएप कर रहे हैं। चेटक सर्कल से मुकेश जिंगर, रेणु जिंगर, प्रेमपुरी गोस्वामी सहेलियों की बाड़ी से हैं और अजय श्री नगर जी नगर, प्रिंस जी नगर, ये हैं माफ़ कीजिएगा, अजय जिंगर, प्रिंस जिंगर, कुलदीप, सज्जन कॉम्प्लेक्स, आज़ाद नगर के श्रोता हैं। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलिस, ये सहारनपुर के श्रोता हैं। इसके बाद इसी गीत को पसंद किया विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग, राहुल शर्मा, अक्षय अमर, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता, वशिता, भवर, गौतम और रामद्वारा चौक धूली बावड़ी से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल। इसके बाद ये संदेश आया है मीरा नगर से मनोहर सिकलिंगर, सरोज, गणेश घाटी से हेमेंद्र विजेंद्र सिकलिंगर का। अगला संदेश है जगदीश धाकड़ या नायमा, श्री रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी का, रतलाम एमपी से। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र नोखेलाल छत्तीसगढ़ से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। ये हैं दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक, शेरी वडनेर अकोला से बलदेव दामोदर, अरुणा, चंद्रपुर महाराष्ट्र से मधुकर येले, कंचन नीले, शुभबुद्ध बिहार बाबली से मंगेश पानबुड़े, भानुदास और टेकरेवाड़ी नागपुर से सुशील येले, मनीष येले। अगला संदेश इन्होंने अपनी ही फिल्म का कोई नाम लिख दिया है, ग्राम पिजौनिया जिला जानौर उत्तर प्रदेश से हैं ये सत्येंद्र कुमार, चंदसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक। और इसके बाद ये अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशक्त सिंह, राहुल का संदेश। और ये छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा का, इन्हें भी मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत पसंद आया है। और इसी गीत के लिए संदेश आया है बलकरण वर्मा का, साथ में है अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, इनका पूरा वर्मा परिवार छत्तीसगढ़ से हमें व्हाट्सएप कर रहा है। और धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता, प्रीति, ऋतु और संकल्प कृषि और इनके साथ हैं वेदा सिंह। इसके बाद जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमेता आहूजा। अगला व्हाट्सएप आया है
कलानौर से नरिंदर शर्मा किरण।

नितिन और मयंका, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी पायल, और इसके बाद इनके कुछ और नाम भी हैं इसमें, संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावा खुशनसीब, अब्दुल हक डावा जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावा राजेंद्र कटारे। और इसके बाद बागपत उत्तर प्रदेश से व्हाट्सएप आया है संजय डिंगिया नमन अपार का, और अगला संदेश सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर से है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी बेबी बॉय हिमाक्ष का। आगे और भी नाम बहुत सारे पहुंचे हैं, लेकिन पहले अगला गीत, फिल्म का नाम आदमी खिलौना है।

बिल्कुल दोस्तों, कर्म करना हमारा काम है, योजना इंसान बनाता है, लेकिन मर्जी से जिसके संसार चलता है, ईश्वर वही निर्णय करता है। चलिए, बहुत सारे नाम हमारे पास पहले भी आ चुके थे और उनकी शुरुआत करते हैं। तो मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा चिंतामणि की घाटी से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, और इसके बाद गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, सौरभ डूडी का संदेश है ये। लेवाई छत्तीसगढ़ से है गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी उज्ज्वल दास इनके साथ। ये है पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। इसके बाद बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, ये शायद इनके नाम हमने ले लिए थे, इन्होंने वापस संदेश भेजा है, ऐसा ना करें। मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति, भूमिका, ये श्री गंगानगर के श्रोता हैं। साधु शहर जिला श्री गंगानगर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला इनके साथ में हैं। इसके बाद ये अगला संदेश है गणेश नगर महावीर जैन चित्तौड़ा का, और इसके बाद वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का संदेश है, और मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के गीत के लिए ही ये आया था। प्रकाश कनौजिया, ऋषि मलय, आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑपोजिट इनका निवास स्थान, वहाँ से इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू, और इसके बाद राजकुमार माथुर, स्मिता, निलय, अक्षिता, आलिंद माथुर, बोहरा गणेश जी के श्रोता हैं। ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर के श्रोता है, संदीप मक्कड़ इनके साथ में हैं। और ये हैं कैलाश मार्ग से लाला सोनी, अशोक तोलानी, मोहन कसारा और शेर सिंह राजपूत। इसके बाद अगला व्हाट्सएप नमस्ते के साथ मॉडल टाउन करनाल से है सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, शशि बाला, और ये हैं किरण गुप्ता इनके साथ, राम राम सा के साथ इनका संदेश। और इसके बाद ये शीला परिहार सोलंकियों की घाटी से उदयपुर से हैं, और इन्हें ये गीत बहुत पसंद है, माय फेवरेट सॉन्ग, हार्ट टचिंग, धन्यवाद। और इसके बाद ये हैं महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल और प्रगति नाचानी। अगला व्हाट्सएप पहुंचा है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवीज, लक्ष्य, सोनी, मोहितनी और ऋतिक, बलवीर सिंह इनके साथ में है, ये दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के श्रोता है। जवाहर नगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विन और विपुल कांबड़े, धन्यवाद के साथ। और इसके बाद ये संदेश है झारखंड से देवेंद्र तांती, राकेश, प्रकाश, निशा, रेशमा, दीपाली और देवेंद्र जी का। अगला व्हाट्सएप है बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण, तरुण और प्रतीक चौहान का। ये इन्होंने गीत की फरमाइश भेजी है, ऐसा ना करें, गीत हम प्ले कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो जाखोद राजस्थान से है शंभु दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा। इसके बाद ये भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, नमस्ते के साथ इनका संदेश। और वारियों की घाटी से भावना रावत, नितिन रावत, जगदीश चौक से उमा वारी, साक्षी वारी। और अगला संदेश दिनेश जिंगर, मोहित जिंगर, इंदु भूतमहल से और बाबूलाल जी, दिनेश टांक, मुकेश टांक, पुष्कर जी, सूरजपुर, रेगर कॉलोनी के श्रोता हैं। सही वालों की हवेली से जगत सिंह चौहान, सविता चौहान, मोना और धीरज, रियासत अली, जाहेदा बानो, इमरान अली, निगार परवीन, इरफान अली, जकीरा बानो, ये प्रेस कॉलोनी से व्हाट्सएप कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ है तीजका चौक से राजकमल खंडेलवाल, शैलेंद्र, इंदरलाल और दीपक, मुकेश बड़ारिया, मामा जी, लालराम जाटोलिया, दीप टेलर, ये सेंटर एरिया उदयपुर के श्रोता है। ये अगला संदेश है डॉक्टर चंद्रप्रकाश चित्तौड़ा का, इन्हीं के साथ शारदा चित्तौड़ा, रॉबिन, विकास, भावेश, सोनाली और विनीता, कृतिका, दिया, प्रियांश, तनिष्क और तनिष्का इनके साथ में है। अगला

व्हाट्सएप यवतमाल महाराष्ट्र से है, लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता लोखंडे साथ में है, और मनीष यादव, ममता यादव, दर्शील का पुराना आरटीओ ऑफिस रोड प्रताप नगर उदयपुर से व्हाट्सएप आया है। ये आदमी खिलौना है फिल्म को गीत पसंद करने वाले श्रोता, रहमान कॉलोनी उदयपुर से, मोहम्मद इदरीश, रुखसाना बानो, मुस्तफ़ा रज़ा और श्री कृष्ण आर्ट दिवाली से हैं, ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत, रजत और टप्पू। इसके बाद ये हैं, इन्होंने भी वापस नाम भेजे हैं, आप ऐसा ना करें कृपया करके। और अगला ये संदेश है, छतरपुर से, ये हैं नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत, हरिराम, दशरथ, शीला भाभी। देखिए आप रिलेशन मत लिखिए, सिर्फ नाम लिखिए, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत मुसीबत होती है, मुश्किल लगती है, मतलब मुसीबत क्या कहें हमें, मुश्किल होती है पढ़ने में, क्योंकि ना तो कोई कॉमा है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे रिलेशन शुरू हो रहा है, कहाँ सरनेम ख़त्म हो रहा है, तो साफ साफ नाम लिखा करें। ये हैं इनके साथी भगवती, रामकली, सावित्री, अंशिका, मोहिनी, गोलू, नीरज और इनका समस्त राम टोरिया, बुलेंदखंड निवासी ये श्रोता हैं हमारे। इसके बाद फिल्म का नाम गलत हो गया, अच्छा आदमी खिलौना है फिल्म के गीत को पसंद किया है, एडवोकेट कुमार राजेश नागौरी, और इनके साथ हैं वीना नागौरी, एडवोकेट वैभव नागौरी, दिव्या और प्यारा सा नन्हा सा अधिराज नागौरी, और ये दुर्गा नरसिंह रोड के हमारे श्रोता हैं। इसके बाद अगला संदेश जोधपुर से ही आया है, नरपत सोनी वैशाली, गणेश चौक से रात, ये है नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी का संदेश। और इसके बाद मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहद, मिफ्रा, बेबी चाहत, ये गिरिडीह झारखंड के श्रोता हैं। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, और गांधी चौक बाड़मेर से हैं बबलेश पवार, डैनी, मनीष पवार। इसके बाद इन्होंने कुछ और भी लिखा है, ये पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब है इनका, ओके। इसके बाद ये हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और ये हैं तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम रबिया राबिया, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। और इसके बाद बहुत सारे नाम और भी हैं, शामिल करेंगे प्रोग्राम में ज़रूर से, लेकिन उससे पहले जुबैदा फिल्म का गीत आप तक पहुँचाते हैं, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम है तराने हमारे व्हाट्सएप आपके, और आज क्योंकि अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन है तो हमने कुछ गीत उनकी फिल्मों के भी कार्यक्रम में शामिल किए हैं। और चलिए अब आपको श्रोताओं के नाम बता देते हैं। ये संदेश आया है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक का। इसके बाद शास्त्राचार्य नैमिश व्यास, एडवोकेट ऐश्वर्या व्यास, लिटिल मास्टर जियांश का सूरजपुर उदयपुर से संदेश हमें मिल गया है। गुड मॉर्निंग के साथ ये हैं दिल्ली गेट से सलमान अहमद टेलर, भरत भाई टेलर छतरीवाला, नाइस सॉन्ग, इन्हें पसंद आया। और इसके बाद ये है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी, जमशेदपुर के हमारे श्रोता। इंदिरा विहार दिल्ली से है डॉक्टर बेबी अंसारी, डॉक्टर डब्लू अंसारी। राजकोट गुजरात से अजीता कुटरिया, और गोरैया चौक अम्बाला से हैं संदीप हगोड़िया, राकेश, और सरगुजा बक्सर से राज एस डी वली अंसारी। ये है बरकाना से अफजाल ताज, शाहीन तो सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक का व्हाट्सएप। इसके बाद ये आदमी खिलौना है फिल्म के गीत के लिए ये संदेश आया था आयुर्वेदिक चौराहे से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा का। पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण रावत और नक्श का। इसके बाद ये है महाजन कीर्ति, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, नरगौड़ा छत्तीसगढ़ के श्रोता। लाल सिंह कुमावत, मीना मोहित, मीनाक्षी खेरादीवाड़ा, रंगीला भैरव चौक से हैं, विनोद कुमावत, नीलम गजेंद्र, जया, कुशल, कोमल, हिरण मगरी सेक्टर 5 से, शिवलाल कुमावत, छगन, राजकुमार मोहित, चारभुजा जी खेरादीवाड़ा से हैं, और किंजू कुमावत, शौर्य, कार्तिक, दादाजी, इनके दादी जी भी सेक्टर 5 उदय पार्क से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसके बाद ये है राहुल भावसर।

मिनी हर्षल कुसुम और ये आकाश सोनी, निशा उदयपुर के ही श्रोता हैं। इसके बाद ये हैं अनिल भावसर, भगवती, पूजा। और आप भी अगर एक ही एरिया से नाम लिख रहे हैं तो कृपया करके बार बार एरिया का नाम ना लिखें। ये है सुंदरलाल पूर्बिया, सॉरी पूर्बिया गायरी और लाला गायरी कुमारों का भट्टा से। बोहरवाड़ी से हैं आशिक आलम, शब्बी टेलर, ताहिर लड्डू, सिराज हबीब। और इसके बाद ये हैं राजकुमारी सालवी, रोशन लाल, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, हैत्विक, इनका पूरा सालवी परिवार। ये इन्हें प्रोग्राम अच्छा भी लग रहा है। मीरा कॉलेज के उधर से बोल रहे हैं और पंडित जी सहेलियों की बाड़ी के सामने से, इनका भी व्हाट्सएप आ गया है। गुड मॉर्निंग के साथ ये है सिद्धार्थ नगर टेकरी जिला धारा शिव महाराष्ट्र से सुमंत, बुद्धभूषण, वल्लभ और विमल, अरोही, लाल सिंह और इनका पूरा मस्के परिवार है और इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद। इसके बाद ये हैं सलमा आचारी, होजीमा सुरगा, संजीदा तबस्सुम, अलीशा और ये हारोल कॉलोनी के शोधा हैं। रेजिडेंसी राजकोट से व्हाट्सएप आया है हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या का। और वीरमगाम सिटी से है अजीता मेहरा और सुनीता। इसके बाद ये संदेश है मनीष टेलर, बाबूलाल धाबाई का, उदयपुर से ही। कुस्बा गुनौर लोनी से ये हैं नसीमुल इस्लाम गुनौरी, प्रकाश वीर राजपूत, सीमांध्र पार्क राजकोट से हैं कमलेश जयपुरिया, मथुरा से आलिया अंसारी, पिंकी और सबा, और रायगढ़ से हैं लालचंद मिश्रा, कुमकुम और ये इनके नाम। इसके बाद ये दिल्ली गेट से हैं एडवोकेट राज बोस, लेक सिटी लिसनर्स क्लब के सभी सदस्य, और जुबेदा गीत का गाना इन्हें पसंद आया है। इसके बाद यह है बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल, मीरा और अनामिका का व्हाट्सएप। इसके बाद ये हैं धारावती सुहालका, कौशल्या, ज्योत्सना, पद्मा सुहालका, उदयपुर के श्रोता। और इन्हें ये मुकद्दर का सिकंदर का गीत अच्छा लगा था। उसके बाद ये हैं बहुत सारे, इन्होंने नाम रिपीट करे हैं और पता नहीं क्या क्या मैसेज किए हैं, ऐसे फालतू मैसेज ना करें कृपया करके। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और इसरार नरगिस खातून, ये दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, राधिका प्रभा देवी और इनका पोता है अलकबीर, ये छत्तीसगढ़ बालोद के श्रोता हैं। इसके बाद आदमी खिलौना है फिल्म का गीत पसंद आया मल्ला तलाई से, फैयाज हुसैन, रजिया, फरीदा बानो, मोहम्मद सैफ और रुबीना को। अगले ये व्हाट्सएप की बात करें तो ये डुमराव से है वलीउल्लाह अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और जालंधर से अशोक जाटव। चलिए अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं और अगला गीत आशिक फिल्म से।

करिश्मा कपूर और बॉबी देओल पर फिल्माया गया ये गीत, आवाज़ अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की। और हमारे पास नाम भी आ रहे हैं और ये शिकायत भी आ रही है कि बहुत से श्रोता फेक मैसेज भी भेज रहे हैं, तो कृपया ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता है। फिल्म जुबैदा के गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं चंद्र प्रकाश अग्रवाल, चंदा, हर्ष और भरत, कृष्ण कुमार हरिव्यासी, सरोज बाला, मेघा गीत, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सदस्य धानमंडी से व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसके बाद ये हैं अशोक आनंद, मीनू नैनानी, प्रभात नगर सेक्टर 5 से, बहुत अच्छा सॉन्ग प्रोग्राम चल रहा है ये कह रहे हैं सुरेंद्र सोलंकी, धन्यवाद आपका। और ये है नागा नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू, सोनू, सैफन भाई। और आशिक फिल्म के गीत को पसंद किया है भोपाल वाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री ने, बापू बाजार से है चेतना रावत, साक्षी रावत, वारियों की घाटी से ही गुनगुन है। इसके बाद अच्छा मैं व्हाट्सएप पर लोकगीत सुनना चाहती हूँ, राजस्थानी लोकगीत अच्छे लगते हैं, तो राजस्थानी गीतों का हमारा प्रोग्राम गुखड़ा होता है जिन दिनों में, आप उसे सुन सकते हैं। इसके बाद ये है इसी गीत को पसंद करने वाले श्रोता मोहम्मद सलीम शाह, रजिया बानो, इनाया टेलर, अक्सा, इकरा, मुस्तफ़ा कॉलोनी सलम्बर के श्रोता, ये हैं भरत जायसवाल, सोनी गरासिया, गांव मंडवा डूंगरपुर से। और इसके बाद हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और इनका पूरा अब्बासी परिवार, ये बुलंदशहर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। इसके बाद ये एक और शिकायत है फेक नामों की, तो उल्टे सीधे नाम डाल के भेज रहे हैं, शायद ये उनको जानते भी होंगे, तो ज़रा इस पर भी गौर कीजिए। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा का भी व्हाट्सएप आ गया है। और ये हैं अशोक, प्रताप नगर उदयपुर से हैं। इसके बाद लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, बैंगलोर से निखिलेश, दीपिका, रिधान, कुमावत, बैंगलोर से ही वर्षा, सुरेंद्र और लावण्या का भी संदेश है। धानमंडी से है परमानंद कुमावत, मंजू, विकास, मोनिका और लक्ष्य कुमावत। अगला संदेश आया है सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से, निकिता खतूरिया, कशिश और दीपक मीर क्यू इनके साथ में है। इसके बाद आशिक फिल्म के गीत को ही रहमान कॉलोनी के श्रोताओं ने पसंद किया है, अब्दुल समाद, फिरदौस बानो, मोहम्मद अरसलम और मोहम्मद रजा। इसके बाद ये है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती, लखान छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं ये। घंटाघर से अगला व्हाट्सएप आया है नमस्ते के साथ, हरीश सोनी, मांगी लाल, दीपक, नरेश जी का, और इसके साथ इनके साथी हैं सुंदर लालपुर भी आना।

हर सिंह लाल जी सोनी। और इसके बाद अगला संदेश डॉक्टर निदा अनाबिया, रेहाना बानो, मुफ्ता हुसैन, फरीदा जब्बार सुल्तान, डॉक्टर नाहिद का सैफी कॉलोनी खानजी पीर से व्हाट्सएप आ गया है। मुकेश बड़ारिया, मामा जी लाला राम जाटोलिया, दीप चिलर संचरिया से कपिल दादा इनके साथ में, और चमनपुरा से हैं जहरा अहदा, फातिमा आसिफ, पटवा, और ये हैं उस्मान, हिना, इरफान, गुड़िया, निदा अली, दानिश आमिल, सज्जन नगर उदयपुर से, इन्हीं के साथ हैं एजाज, रजिया, फैज़ा, अमर ब्लॉक बी से, और सवीना से हैं इंतखाब, रेहाना, समिया, खुशी, नाजिमा, हसन परवीन, इरशाद, जीनत, राफिया, मल्ला तलाई से। चलिए अब अगला गीत, ये है फिल्म जिगर का गीत।

अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाज़ में ये गीत जिगर फिल्म से, और जो मैसेजेस हम तक पहुंच चुके थे उनके नाम रामचंद्र टेलर, लीला देवी, कल्पेश, पिंकी, मनस्वी, चैतन्य और कार्तिकेय, ये सेक्टर 5 के श्रोता हैं। इसके बाद ये हैं बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज और उमा राज, इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी और यामिनी राज, और रायगढ़ से हैं नरेंद्र यादव, महेंद्र और जानवी। इसके बाद ये संदेश है धर्मचंद, रेखा, घनश्याम, ज्योति, नवीशा, योगेश, आकाश, शिवानी, वैशाली, सौरभ, समस्त गोयल परिवार, खत्री मोहल्ला, राजसमंद के श्रोता हैं ये। बोरवाड़ी से आशिक आलम, शब्बी टेलर और हसीना का व्हाट्सएप भी हमने शामिल कर लिया है। जिगर फिल्म के गीत को पसंद किया है। रहमान कॉलोनी उदयपुर से यास्मीन बानो, शबनम

सना बानो और फरहीन नाज ने। इसके बाद ये संदेश आया है दुर्गा नर्सी रोड से ही मुरारी मनोहर माली का। साथ में है मंजू, मुस्कान, निखिल और मन शेखर, लक्षराज और इनका छोटा सा जनाकाक्ष माली और इनके पूरे परिवार। इसके बाद ये है कुतुबपुरा से, उदयपुर से है अशरफ खान, रईजा खातून, मंजू, निमी, शीबा, शहला, नजीब खान, सबीहा खानम, 80 फीट रोड से। अगला संदेश आया है कुड़ी जोधपुर से, रवीना सवारा और ये है भरत और इसके बाद इन्होंने कुछ नाम रिपीट भी किए हैं। जयपुर से है राजेंद्र, अरुणा वैद, मुंबई से विनोद रंजना और हरिगढ़ से मनोज, मनीषा, संभाजीनगर से संजय, सपना, उदयपुर से राजकुमार और रेणु जैन। इसके बाद ये इनका भी संदेश वापस आया है, नाम वापस ना भेजे, एक बार शामिल कर लिया जाए तो। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी, अल कबीर, ये छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं और ये हैं इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता। पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के, अच्छा इस गीत के लिए ही इनको ये प्रोग्राम सुन रहे हैं संजय शर्मा, प्रियंका और दारा पंडित, हरियाणा के श्रोता हैं ये। इसके बाद ये हैं ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर के श्रोता, संदीप मक्कड़, इनके साथ बिल्कुल आपके नाम शामिल किए थे हमने, ऐसा ना करें कृपा करके, नाम शामिल हो जाए फिर भी आप कह रहे हैं नाम शामिल नहीं किए। चलिए अगला गीत पहले पहुँचाते हैं और फिर बाकी के नाम।

श्रोताओं के नाम बता देते हैं, सरगुजा मेन पार्ट से हैं विनोद थापा, पूजा रानी, विजय, छत्तीसगढ़ से जानवी, जौमिन, यामिनी, रोहित, डोंडी लोहारा से हरिशंकर बेलदार, प्रभा रानी, और रायगढ़ से हैं उमा राज, जगदीश राज। इसके बाद जय श्री राम, चेतन, दीक्षित, भूपेश, हितांशी, उदयपुर के ही श्रोता हैं। इसके बाद ये संदेश आया है डॉक्टर जयप्रकाश जी, ज्योति पूजा वैशाली अपार्टमेंट उदयपुर से ही हैं। इनके साथ हैं किरण जैन, दीपक गोयल भी, दीपक भार्गव भी। और इसके बाद ये हैं करजाली हाउस से हरीश सोनी, पवन सोनी, चंद्रप्रकाश सोनी, त्रिलोक, सुंदरलाल, पूर्विया, माधव लाल, और ये हैं सिकली।

घर से। और इसके बाद अगला संदेश है सेक्टर 5 से, प्रकाश चंद्र आमेटा, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू आमेटा, सुरुचि, नेहा, चैरी, खिया, लिली आमेटा, उनका संपूरा परिवार। इसके बाद राजकुमार विपिन गोस्वामी का संदेश है चंदनवाड़ी प्रेमनगर से, ये इस गीत को यानी हम साथ साथ हैं फिल्म के गीत को पसंद किया है। विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश, विनीत, पूनम, आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर से इन्होंने व्हाट्सएप किया है। और इसके बाद नरेश दवे, रंजना अंशुल, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सदस्य, प्रताप नगर से हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं। और खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा, शबनम, निदा, इरम कलीम का भी संदेश आ गया है। ये हैं ये क्या लिखना चाह रहे हैं क्लियर समझ नहीं आ रहा है, अगले व्हाट्सएप की तरफ बढ़ते हैं। ये है डिम्पी सुहाल का और श्वेता, नेहा, दीप्ति और डॉक्टर दीप्ति भी हैं, ये सुहाल का परिवार के ही नाम हैं इनमें, कमल सुहाल का भी हैं, कौशल्या भी हैं। चलिए ये गाना आपने सुना, अब कार्यक्रम का अंतिम एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुँचाते हैं।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

इस प्यारे से गीत को पसंद करने वाले श्रोता भीलू राणा कॉलोनी उदयपुर से सोनू यादव पिंकी और इसके साथ ही हैं, इन्होंने शामिल कर लिया नाम, ये दुष्यंत जिज्ञासा 55 बजाज नगर के ही श्रोता हैं। बड़ी जेठी फार्म हाउस से विनोद, उमा, अमित, सुमित, नम्रता, प्रथम, वामिका और अनारिया अनायरा, इन्हें गीत पसंद आया है। और इसके साथ ही ये कनेरा पटियाला से हैं, मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, करण, पलक, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। इसके साथ रामचंद्र पवार, तुलसीराम दैया, डीके चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश माहेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया और इनके सभी मित्रगण उदयपुर से ही हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं इस गीत को पसंद करते हुए। और गुड मॉर्निंग के साथ ये है करजाली हाउस से ही माधव लाल सिकलिंगर, हरीश सुंदर लाल और इन्हें भी ये गाना बहुत पसंद आया। इसी गीत को मीना सिलाई सेंटर सारदिया बाजार भिंडर से है, मीरा मीना और रौनक जतिन यामिनी का संदेश ये। इसके बाद पिलादर रोड से नाथूलाल देवड़ा, गोपाल देवड़ा, गोपाल तंबोली, कांता तंबोली, तिलक तंबोली को भी गीत पसंद आया है। और इसके बाद गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली के श्रोता हैं। इसके बाद ये संदेश है वीना जी सुहाल का, योगेश चंद्र, उर्मिला मामी, केशव नगर यूनिवर्सिटी रोड से। बहुत सारे नाम आपके हमने पहले ले लिए थे, आपने वापस लिख दिए हैं। इसके बाद प्रेमपुरी गोस्वामी हल्दी घाटी बल्लीचा जिला राजसमंद से हैं और प्रोग्राम शानदार चल रहा है, मुकेश जी बोल रहे हैं चिटक सर्कल से। तो सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए आभार, शुक्रिया। और अब मीनाक्षी को दीजिए अनुमति, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।

FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है FM रेडियो लेक सिटी। अभी आप मॉर्निंग लोकल विंडो एंजॉय कर रहे थे। दोपहर के 12 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके बाद सुनिएगा विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से कार्यक्रम यादों की महफिल। समाचार बस थोड़ी ही देर में।

विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार

0: चार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम, बस कुछ ही पलों में।